हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलदी हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे, जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीयां मंगा। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दीयां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी वी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी।

सुनावे कोई कहे, अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनते हैं, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे हैं, अंतर ज्योत राम प्रगासा, जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए तो फिर वो इस कहानी नु जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है, गुरमुख विरले जानी, कोई विरला गुरमुख इस कहानी नु जान

संत बन गए। जिन्हें इस कहानी नूं समझिया नहीं, बेशक उन्हां भगती कीती, सिमरन कीता, पर वो किसी मंजिल ते पहुंच ना सके। इसे वास्ते देखते हैं कि कई बारी बहुता सिमरन करन वाला, बहुता मंदिर मसीत गुरुद्वारे जान वाला भी दुबदा दा भरिया हुंदा, क्योंकि गया ते है मंदिर मसीत गुरुद्वारे, पर मन विचों दुबदा ना कट सके है, क्योंकि पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। हिरदे विच नाम नहीं वसया, प्रकाश नहीं होया, क्योंकि जिहड़ा प्रकाश है परमेश्वर दा, उह ते दुबदा दूर कर दिंदा। जिहाली मन विच दुबदा है ते समझो कि बेशक नाम जपदा है, पर अंदर हालिए दे नाम वसया नहीं। और ए परमात्मा दे मेल दी अवस्था जद हो जाए ते फिर इंसान दी हालत की होंदी है। भगत नामदेव जी सानू अपने शब्द द्वारा उपदेश

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाने ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश

क्योंकि वाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरु ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनिया।

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा कर। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कोई सेवा का चाह, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ये नारा लगाते हैं असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ये लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नू खा के अपनी लालच वाली ये बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनू भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उस जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा, मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तो थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मसाथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे, गजपत पार उतारे। अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। ये जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुम दे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नू ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नू अपने वल खिंचना शुरू किया। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है। इसने जोर लाया, कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए दा जोर चलिया ते हाथी

परमेश्वर किस तरह अपने प्यारियां दी अरदासां सुनता है। परमेश्वर भगतां दी रखिया वास्ते अपने दूतां नूं अपने प्यारियां नूं भेजदा है। विष्णु भगवान ने आप नदी किनारे पहुंच के तंदुए दियां तारां कटियां और हाथी दी बंद खलास कीती। ए हाथी पानी विच बाहर निकलिया, नदी दे किनारे आया ते की देखदा है, सामने विष्णु भगवान खड़े हैं। बेशक जोन हाथी दी है पर सोजी है, हाथी नु सारी सोजी है, फिर भगवान सामने खड़ा है ते जीवन दी सोजी क्यों ना होवे। अगलियां दोनों लता निवा के हाथी ने नमस्कार कीती और मानो पुकार पिया करता है, भगवान कृपा कर इस जून दे विचों साडा छुटकारा कर।

लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला, शाजना सुने बहरोल कचोला, दे महवाक अनुसार चंदो दीवान कह लगा, ओ किथे मैं शाही दीवान ते किथे अर्जन देव एक फकीर, किथे राजसी शक्तियां ते किथे साधा दा डेरा, ओ तुसी चुबारे दी इट मोरी नू लाए हो। चंदो दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कह लगा, भावे तुसी मेरे मुताबक चोन ठीक नहीं कीती, पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा, जाओ जाके सगन पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लिया, उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया, क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु दी निंदिया नहीं सुन सकदा। गुर की निंदा सुने ना कान, कानो घूर के पिछा हटाउंदा ऐ, जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा, हंजू वेख के कास तो हसदा ऐ, जे तू रोंदिया नू नहीं वरौन जोगा, कानो दुख दे दिला नू दुखांदा ऐ, जे तू जख्मा ते मलम नहीं लौन जोगा, कानो बंदिया कूड़ विहासदा ऐ, जे तू नेकियां नहीं कमौन जोगा। दिल्ली दिया सिख संगता ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के हे क्यों भेजी आवे।

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर कीरी से होर कछु बिच बोल दे से कूड़ी।

सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, होर बहुत सारिया चीजा जो प्यारियां लगदिया स्वादलियां लगदियां, कहिंदे मिठियां समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हों का रिजल्ट जो है अखीर दे विच जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया, भोगं त रोगं, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगं त रोगं, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वह खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हन, कहिंदे हन जे सौ वरिया मिठा खाए, कहिंदे हन

जितने भी शरीर दे रस हन उतने ही दुख लगते। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच ग्रिस्तियां नू खास करके ग्रिस्तियां नू इस समझाया है कि जे तुसी ग्रिस्ती हो तो इसका अर्थ ए नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दिती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी ग्रिस्ती हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां ग्रिस्ती लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो अते अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लैंदे हां कि साडी सोशल लाइफ भी है असीं ग्रिस्ती हाँ। हुण गुरु साहब ग्रिस्ती किस नूं कहिंदे हन इह नहीं असीं सुणिया, इह नहीं असीं सुणिया, असीं सिर्फ इन्ना ही सुणिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुणिया। ठीक है ना, गुरु नानक साहब महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया इह दसना भी मुश्किल है अते इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, ते सानू शायद किसी ने दस्या भी ना होवे। गुरु बाबा जी दसदे हन कि ए ग्रिस्ती जे तू सोचे कि ग्रिस्ती होण दे नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है क्योंकि चूं तू ग्रिस्ती है इस करके यू आर अलाउड, वो कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी,

है गृहस्थी, इसके अर्थ सुनो। सो गृही जो निग्रह करे, कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करने का अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वह उन्हें इंद्रिया के रसां का गुलाम न रहे, क्योंकि जो इंद्रिया के रसां का ही गुलाम रह गया वह शरीर के ही तल ते रह गया, वह शरीर तो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया उसनू दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा, वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और ये भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, ये भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही ओ गृहस्थी है, जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया गृहस्थ विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इना इंद्रिया दे तमाम रसा नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इना नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दियां, अपने बिहेवियर दियां तमाम जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभा हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब कि ओ अपनियां नीड्स नू घटावे, अपनियां नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनिया नीड्स नू समझे, अते अपनिया नीड्स नू वद तो वद सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल एलिगेंट पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते काम करता है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करता है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओदी तपस्या करता है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जब तप संजम भिख्या करे, इस गल दी वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਉਸਨੂੰ।

तो साड़ी विचार ये चल रहे थे कि असी महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों जो सानू तन मिलिया है इसकी सानू पूरी खबर नहीं है कि एक ही वस्तु है। इस दे नाल असी की करना है, इस दे विच की कुछ है, इसका सानू पूरा ज्ञान नहीं है। असी एक बेहोशी जिही दे विच अपना जीवन जो है वह गुजारी जानी। सो गुरु बाबा जी की बाणी दे विचों असां तन दे संबंध दे विच जो सानू ज्ञान विचार शब्दों के राही मिलते हैं वो असी समझना। दो नुक्ते आप जी की सेवा च दास ने कल अर्ज किए सी। नंबर एक, ये दुर्लभ है, इस तो वध के कीमती शाय कोई होर नहीं। नंबर दो, ये रब का मंदिर है। आओ अज तीसरा नुक्ता आप जी के सामने रखिए। गुरु साहब आखते हैं ये रब की कामणी है, ये जो शरीर है ये रब की पत्नी है, रब की कामणी है, अते उसने आप इसनू अपनी मर्जी दे नाल डिजाइन किया, आप उसनू उसने सुंदरताई बख्शी है, आप उसने इसनू सवारिया शंगारिया है। ये शरीर रब दी कामणी है, रब दी औरत है। तो अगर साढ़े पास ये है तो एक रब दी अमानत है, ये रब दी कामणी है। महाराज जी अपनी बाणी च आखते हैं

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कर स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिले। तो अगली पंक्ति जरूर फरमाऊंगा।

तीर लक्षण आशा जी दीवार न लगाते कीर्तन विस्मारते उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आई दी चाह सेवक बोलो तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो एवं बेनती की थी कि कई प्रेमी कहने लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिन्हां जिन्हां ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हुण प्यारी साध संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दी वार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दी वार दे कीर्तन का भोग पै रहा है सर्वासा पूर्णी आसा जी दी वार तो ये छंद आपां आसा राग च लगाउंदे

जिन्होंने बाणी नु कुछ समझिया है, कीर्तन कर रहे सन ना इस तो पहला ते पढ़ रहे सन, धन धन गुरु जिन नाम अरातेया, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, सवाल कीता बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई, बड़ी बार कीर्तन सुने, बड़ी बार कीर्तन कीता है, पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है। हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है। ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबिया जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा पाठ कर दिया ने, ते जदों पाठ करन तो बाद जितने सफे हो जान, कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने, ते जिसने कदे प्रतख गुरु की देह समझिया होवे, साडी अख च कोई एक तीला चला जाए ते सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी। एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। सवाल कीता ए बाणी की है, जिसनु बाणी दा पता है उसने कलम चुकी ते लिखना शुरू कीता। सानू एक सनेहा दिता बाणी पढ़न वाले हो, ए बाणी की है। साडी नजर ते सिर्फ इथों तक पहुंची है कि ए अखर ने ए सफे ने जिन्हां नूं असीं वरके कहने हां, जिन्हां नूं असीं पत्रे कहने हां, जिन्हां नूं असीं कई वार होर सुचज्जी बोली विच अंग कहने हां। ते साथ संगत आ वेखो, तन है इसकी कलम ते तन है ए लिखण वाला, कहण लगा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते फिर की है। ते साथ संगत अज तू ए प्रण कर लो, जो मैं कहण लगा अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब नूं इसे तरह समझना। जिसने कलम चुकी है वो लिख रहा है, वो कहंदा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते जिदे सामने लिख रहा सी वो कहन लगा फिर की है। वो कहंदा जो मैं वेखिया वो मैं लिख रहा, जो मैं वेखे ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ए सीना ए गुरु नानक दा कमाल है।

तू हाथी ते सवार हो गए, गहने पा के कीमती वस्त्र पा के सिर ते सोने का छदर चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया, तू भावे समझदार है मैं बहुत

वो परमात्मा हर जगह है। ते बच्चे भी कहते हैं वो खुदा हर जगह है। मौलवी रोज पढ़ाता है ते बच्चे रोज पढ़ते, रोज सुनते हैं सुनते हैं, हुण ये गल याद हो गई कि खुदा सब जगह है, हर जगह है। एक दिन मौलवी ने एवें बच्चों नु सवाल कर दिता, बच्चे हो कोई ऐसी जगह है जिथे खुदा नहीं? बच्चे सारे चुप, क्योंकि अज तक ते मौलवी साहब इहो ही पढ़ाते रहे ने कि खुदा हर पासे हर जगह। ते हुण किवें कहीए खुदा किस जगह नहीं?

मौलवी साहब कहने लगे, अच्छा तू दस, मैं तो एवं सवाल किया बिना मतलब का सवाल, पर जे तेरे को जवाब है तो तू दस। बच्चा उठ के कहन लगा, मौलवी साहब वैसे तो खुदा हर जगह है, हर पासे है, अगर वो किधरे नहीं तो इंसान के चेते विच नहीं। आखो सतनाम श्री, वैसे तो खुदा हर जगह है, अगर वो नहीं तो इंसान के चेते विच नहीं। इंसान ने रब को बुला दिता ते मौलवी उस बच्चे नु मत्था टेकया कह

ता पिता ने किया बेटा ओ ते ज्योति जोत समा गई। पर उन्ना की जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जावा।

एक महीना सेवा भी की थी। 600 रुपया मैं गुरु नू भेटा किया, गुरु ने मैनू की दिता है एक कड़ा प्रसाद जेड़ा मेरा पिता का रोज बनाता है, एक कड़ा दिता है लोहे का नाले वचन दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, पर ध्यान सिंह तू दस इस कड़ी ने मैनू की देना, आपको सतनाम सिंह पर साथ संगत जेड़ा गुरु का सिख है वो गुरु की निंदा नहीं सुन सकता। ध्यान सिंह उठे घरवाली को चला गए ते कहन लगा भलिए रोके एक मूर्ख आया, वो की जाने गुरु का वचन की होंदा, जे तू मेरे नाल सहमत होवे गुरु का वचन ते कड़ा उहदे कोलों असी लै ली। ते साध संगत कई परिवार बड़े भागा वाले होते, ध्यान सिंह माजरीए नूं देखो उहदे मन विच किन्ना प्यार है ते अगों उहदी घरवाली कहन लगे स्वामी जी एक रुपये की एक मन कणक आती, मन कणक साफ करन लगी एक दाना चुकीए ते उते आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। वो दाना चुक के एक पासे रख दी, फिर दूसरा कणक का दाना चुकीए फिर आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण एक मन कणक विच किन्ने दाने होंदे, एक एक दाने ते वाहिगुरु कह के कणक साफ करिए, फिर वो कणक बाजार वेचण लै जाइए ते बाणीए ने उहदा मुल एक रुपया ही पाणा है, आपको सतनाम सिंह। पर जे उही कणक गुरु नानक दे घर लै जाइए ते फिर गुरु नानक सिख नूं अपने गल दे नाल लगा लैण, गहने ला के दे दिंदे, गहने बेचे 605 रुपया जेब च पा के

के नाले के है। सिख सिख का सत बणज सिख सिख का पाओ दगा सिख मम ना करे पानी अन्न पकाओ। सिख नु सिख नाल

बड़ा खुश। पिता ने पूछिया, सुना फिर बेटा, गुरु के दर तू की लैके आए? जद के गुरु तू की लैके आए? ते मोरा दियां थैलियां अगे कर दी। जद इन्हें यह कहा, मैं गुरु का वचन ते कड़ा बेच के आए। ते पिता ताई मार के रूपे, क्योंकि गुरु नाल प्यार करता सी। मां नूं पता लगा, मां दा जिवें दिल बाड़ गया। रोंदी हुई मां कहती है, सुन कुकर्म ते मात दुखारी, सुत क्यों पा गुरबच विवहारी। ऐ सुत ऐ पुत्र, ऐडा वड़ा घोर पाप क्यों कीता, तो गुरु का वचन क्यों बेचे? पिता ने समझाया, मां ने समझाया, पर हुण सामने सोने दियां मोहरां हन। आखो सतनाम श्री, हुण सिखिया चंगी।

जिस तरीके डोल देता, बिस्तरा गिल्ला हो गया, कपड़े गिल्ले हो गए, हरी सिंह की जात खुल गई और नींदर नहीं आती क्योंकि कपड़े गिल्ले, एक सर्दी उठ सकदा नहीं, उठ सकदा नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा, पासे मारदा है बिस्तरा गिल्ला, नींदर नहीं आती पर सास संग मां दे फिर मां ही मां पासा मार के लबी गई, अखा बंद पर जागदी, अज मां का मन बड़ा दुखी हो रहा है, अज मेरे पुत्र को नींदर नहीं आ रही, दिन चढ़िया

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असी ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनी वध जवाना बच्चा नु पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ़ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नु कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदो गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने होए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इस सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा।

खोजत खोजत भई बैरागन प्रभ दर्शन को हों फिरो तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन माई रजनी ने माई रंगपड़ी ने किया फरीदा किसे मुर्शद की सेवा कर आखो श्री वाहेगुरु प्राप्ति मुर्शद तू हो गई कोई गुरु धारण कर बाबा जी वचन करते सन कितना जप तप क्यों ना कर ले इंसान जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता कितना कर तीजी पातशाह ने इक्की वेरी तीर्थ यात्रा की थी गंगा मैया की स्नान की थी हर साल जाते सन और भी कर्म कांड दान पर करते सन पर बैरागी ने कह दिता सी ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु मैं तेरे हथों पानी पी बैठा निगुरा गुरु जी गुरु मिल गया भाई सबो कुछ ते असी गुरु वाले तां बनते हैं जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु फिर अस गुरु वाले बन जाते गुरु का बड़ा माण है ये गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं जे पटा ना आवे ओनू फिक्र ही फिक्र जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया खसम का बड़ा माण निगुरे का भी कोई चीज लावारस कुत्तियां दे तरां मार मुकाया जांदा है उन्हां दा जीवन किसे काम दा है गुरु दी वड्डी शक्ति गुरु दा वड्डा आसरा है गुरु दा बड़ा मान है बुल्ले शाह ने लिखिया ना मैं जब तक पूजा की थी ना मैं गंगा नहाया ना मैं पंज नमाजां पढ़िया ना मैं हज कराया बुल्ले शाह मैनूं मुर्शद मिलिया उस एवें चा बख्शाया एवें जिस ते मेहर कर दे भाई मेरा स्थान माई रंगी ने कहा फरीद कोई गुरु धारण कर चला जा आज मेर ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शिद है ओनू जाके तारण ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री फिर फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इनान करांदा है ख्वाजा पीर कितना समा हो गया 12 साल आज आखिर